हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही सर? हेलो हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, नहीं आ रही? हेलो हेलो।

हेलो सर, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 4 5, हेलो हेलो हेलो हेलो सर, नहीं आ रही।

हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। अरे ऑन ईयर मिल रहा है, टाइम मिला लेते हैं। 5:21:51 हुए हैं सर जी। कंप्यूटर नंबर 1 पीसी टेस्टिंग। कंप्यूटर नंबर 2 टेस्टिंग सर।